जो हमरी बिद होती मेरे सतपुरा जो हमरी बिद होती मेरे सतपुरा साबित तुम हर जानो आपे साबित तुम हर

नौजवान कहने लगा, मेरे नाल ऐसी बीती कि मर्दा मर्दा में बच के आ गई। मैं आख्या ये मर्दा मर्दा बच के आए, वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। जदों सिख सोचन लग पैंदा मैं हुण बचना है, ते गुरु दे सिक्खी नूं तलांजली देनी शुरू कर दी, गुरु नूं पिठ देनी शुरू कर दी। ते मैं क्या वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। गुरु कलगीधर दे सन्मुख रवि, गुरु तो बिना किसे कम नहीं आउणा। भाई गुरदास सिंह जी कहंदे

बहुत प्राचीन मधुर अते परमुख रागों विचों एक है। इस विच ऋषव अते धैवत अति कोमल अते होर सुर शुद्ध लगते हैं। वाद्य स्वर धैवत अते समाधि ऋषव है। इसके आरोह अवरोह विच सत सुर लगते हैं। अमृत वेले तो पौ पटाले दे समय दौरान यह राग गाया जाता है। इस राग की मधुरता ऋषव अते धैवत दे उचित प्रयोग ते निर्भर है। पैरो दा वातावरण अति सुहावना हुंदा है। प्यार उपजाऊ है। इस राग विच भगत प्रहलाद जी की कथा का जिक्र गुरु साहब ने विस्थार नाल कीता है, जिसने हरनाक्ष दा हंकार भन्निया। गुरु दी करणी बारे फरमान है, मृग पकड़े बिन घोर हथियार। इत्थे ही नामदेव जी दी सूरमताई दा भी जिक्र है, जिन्ना मां नूं कह दिता सी ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए। बीबी जसविंदर कौर जी पासों शब्द सरवण करो, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। अते दूजे शब्द दा गायन कर रहे हन भाई रविंदर सिंह जी। शब्द है माथे तिलक हथ माला बाना। पहला शब्द गुर जैसा

वनस्पत में बैसंतर सगल दूध मैं पिया, सगल वनस्पत में बैसंतर सगल दूध मैं पिया, ऊंच नीच में जोत समाड़ी खट खट माधो दिया, ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर।

अंदर वसे निरंतर रही को जो पाई बाहर भीतर एको जानो एक गुर ज्ञान बताई जन नानक बिन आपा।

चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख भंज। चीत आवे ता श्रद्धा पूरी, चीत आवे ता कबू न झूरी। अंतर राम राय प्रगटे आए, गुरपुरे दियो रंग लाए। चीत आवे ता सर्ब को राजा, चीत आवे ता पूरे काजा। चीत आवे ता रंग गुलाल, चीत आवे ता सदा निहाल। चीत आवे ता सदन भरंता, चीत आवे ता सब रंग माने। चीत आवे ता चूकी काने, चीत आवे ता सहज घर पाया। चीत आवे ता सुन समाया, चीत आवे ता सुन समाया। चीत आवे सद कीर्तन करता,

अनक जतन नहीं होत छुटारा, बहुत सियाणप आगल भारा। हर की सेवा निर्मल हेत, प्रभु की दरगह शोभा से। मन मेरे गावर नाम का ओला, तुझे न लागे ताता झोला। ज्यों बोहित भय सागर माहे, अंधकार दीपक दीपाहे। अग्न शीत काला हस दुख, नाम जपत मन होवत सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूरन होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जिस आप दिवावे।

नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया, बिन जिहवा कहां को बगता, बिन श्रवना कहां को सुनता।

साहिब गुरु नानक देव जी बचन करते हैं, ध्यान देना बाणी में पातशाह आखदे हैं।

तीरथ गवन करे। खटकर्मा ते दुगुणे पूजा करता नाए, रंग न लगी पार ब्रह्मता सर पर नरके जाए। राज

नानकमेर शरीर का कृत कृतवा जुग जुग फेर बटाइया ज्ञानी बुझेता सचुग्रह संतो का धर्म ग्रथवाओ त्रित राज्य का।

साल मद मद रुपियाए है सोबत सजासन बैरासन दे अंक माल प्रेम रस बिस्म होए सहज समाए चातुर्क शब्द सुन अखियां उघर गई चातुर्क शब्द सुन

0: टेक है क्या गुन तेरे सार शुमाली शुरुआत है मैं मूर्ख की केत की बात है कोट अपराधी दरिया रे गुरु नानक सुनिया पे किया
1: से फिर गर्वास ना पड़े।

हर आराधना जाना रे, हर हर गुर गुर करता रे, हर जियो नाम परियो रामदास, नाम परियो रामदास, हो दीन दयाल कृपा।

भाई बहुत मद जो बास बस मुकुरमा है जैसे छाई तैसे ही हर बसे निरंतर कटगी खोजो पाए बार पीते बार पीते एक जानो।

तो इत्थे ही समाप्ति है। हार्दिक तौर ते गुरु साहिब गुरु की संगत ते उन्हां समूह गुरु प्यारियां दा जिन्हां ने बड़ा सुंदर संगीतक ढंग नाल इस समागम रचिया है उन्हां समूह दा धन्नवादी हाँ। इतने समय विच कीर्तन करदियां कोई विचारां करदियां बेअंत अत्यंत भुलां गलतियां हो गईयां होणगियां। गुरु साहिब ते गुरु की संगत बख्शंद है समूह दे धन्नवाद नाल फतेह दी सांझ पाईए जी।

आज हम गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते हैं, उनके चरणों की छोर प्राप्त होती है। कितने बड़े भाग होते हमारे, लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते हैं, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

ख्याल का है, गुरु सूरज के माफिक है, ये बात अलग है। हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं, ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दरवाजे खोल।

0: सब सबको
1: सबको आखे अपना जिसना ही सोचण कदिया पीता आपो अपना भी लेखा संडिया यारा नाई हाथ जग।

जिनी पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तेने हर नाम बिड़ावे राम राजे जिसकी त्रि